0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो पियों चुनके रे वेर क्वारो
0: पियों चुनके रे वेर क्वारो
1: पिमारा मैं पाचो
0: पिमारा मैं पाचो
2: यू आलंग यू बिरुटेला

0: तुम ये क्रेवेर क्वारो
1: बीमार मैं पाचो
0: इटी विन्यो और रेडियो इटी विन्यो और रेडियो

0: ये क्रेवर क्वारो
1: बीमार मैं पाचो
0: इटी विन्यो और रेडियो पियम ये क्रेवर क्वारो
1: बीमार मैं पाचो
0: इटी विन्यो और रेडियो